उसके पीछे बहुत सारे मफहूम हो सकते हैं, और ये जो 70 अरबिक में इस्तेमाल होता है मामूलन ये 69+1 के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये एक सिंबॉलिक टर्म है। 70 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, काउंटलेस यू कैन से। तो ये सब बातें हैं यहाँ पर, तो अज़ादारी में भी एक जाहिर है और अज़ादारी में भी एक बातिन है। अब मुझे डर ये है आज की दुनिया में चमक जाहिर की इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है लोगों के लिए कि बातिन पे तवज्जो तकरीबन ख़त्म हो गई है, और ये सब एक वजह से हो रहा है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में इन अय्याम में अर्ज़ करूँगा। दूसरी जो इससे पहले बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ वो ये कि भाई वेस्ट में जब ये रेनेसांस आया 16th सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर, तो गोया एक शिफ्ट हासिल हुआ, इवन दीन और स्पिरिचुअलिटी को जाहिर के अंदर ढूंढने लगे। तो मसलन उस रेनेसांस से पहले जो हज़रत मरियम अलैहा सलाम की तस्वीरें बनती थीं, स्कल्पचर्स बनते थे, उसमें उनकी फिजिकल ब्यूटी के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं था, चेहरा सादा सा बनाते थे और एक ऑरा के साथ, एक स्पिरिचुअल लाइट के साथ इस तरह करके ड्रॉ करते थे, या जो स्केचेस बनाते थे, या मसलन जो कुछ भी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर उनकी ब्यूटी की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी, फिजिकल ब्यूटी की तरफ। प्रॉफिट्स को भी फिर इसी तरह देखा, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुजस्मा बनाया गया वो आपकी खिदमत में मालूम है कि वो क्या हशर किया। तो ये एक शिफ्ट था जो यूरोप के अंदर हुआ था रेनेसांस के ज़माने में, कि वो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, बातिन पर तवज्जो नहीं देते थे, सारी तवज्जो जाहिर के ऊपर आ गई थी। अज़ान मोहतरम, शायद जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ वो बाज़ औक़ात इंसान कहता है बात बड़ी बात है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी शायद ना हो, लेकिन बहरहाल हमें ये ख़तरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अज़ादारी के अंदर इस गलती के मुर्तकिब हो जाएँ, ये गलती हम कमिट कर बैठें, क्या ज़ाहिर पे तवज्जो बहुत बढ़ जाए और अंदर स्पिरिचुअलिटी, मीनिंग्स और कॉन्टेंट्स, इसके ऊपर तवज्जो ख़त्म हो जाए। डिलीवर कैसे होना है, क्या डेकोरेट होना है, कितना तबरुक आना है, इन पे तवज्जोहात ज़्यादा हो जाएं, और ये कि भाई हमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस का क्या होगा, हमारी एनलाइटमेंट का क्या होगा, हम डेवलप हुए या नहीं हुए, नाऊज़ बिल्लाह ताला, इस पे तवज्जो कम हो जाए, मुझे डर ही है। तो मिसाल के तौर पर जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक ज़माने में रही है, अब कम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। टू मच ऑफ एम्फेसिस ऑन एलोक्वेंस, खिताबत के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा इसरार, कैसे डिलीवर किया मौलाना ने, क्या बोला, क्या शेर पढ़े, क्या किया, ये किया, वो किया, लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, कोई बुराई नहीं है अप्रिशिएट करने में, इंसान मजलिस पढ़ रहा हो इसको एक एलोक्वेंस के साथ पढ़े, एक तरीके से पढ़े, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसकी वजह से कोई और चीज़ सेक्रीफाइस हो रही हो और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, हाँ अब इशू है, अब प्रॉब्लम है। क्यों, ये अगर खुदा न करे ऐसा हो गया और इसके मेन कॉन्टेंट्स मिस होना शुरू हो गए तो फिर इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। ये प्रॉब्लम हम सब के सामने आती है, और ये जो हमारे पास रिवायात मौजूद हैं जो गैबत के आखिरी ज़माने को एक्सप्लेन कर रही हैं, और उर्दू में अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं बहुत ज़्यादा रेफ़र करता हूँ, किताब है जमाल मुंतज़र, अरबी किताब थी मुंतखबुल असर, जिसका ट्रांसलेशन हुआ जमाल मुंतज़र, या जमाल मुंतज़र भी कह सकते हैं आप एक लिहाज से। उसके अंदर ये रिवायात बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट हुई हुई हैं कि भाई कारी तो होंगे कुरान, बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ने वाले होंगे, लेकिन मफहूम किसी को नहीं पता होगा। तो इससे ज़रा होशियार रहने की ज़रूरत है, वो ये कि ऐसा ना हो कि हम लोग अज़ादारी सईदुश्शुहदा के अंदर वो जो एक अंदर का खलूस होता है, सिंसेरिटी होती है, एक डेप्थ होती है इमोशंस के अंदर सईदुश्शुहदा के लिए, नाऊज़ु बिल्लाह उससे हम पीछे न चले जाएं। ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँ, जब तक हमारी मजालिस के अंदर चंद लोग भी पुरखलूस बैठे हैं।

तो वो जो लाइन है वो कहाँ पर है? तो मुझे एक वाक़या याद आता है, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ और फिर इस बात को अर्ज़ करूँगा और फिर हम आएँगे उसके ऊपर आसानी या सख्ती की तरफ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफ़ा मैं यूरोप में कहीं पे एक साहिबा मोमिना माशाअल्लाह उनके साथ था और उनकी फैमिली के साथ बैठकर ये बात हो रही थी कि भाई ये जो इस्लाम है और वेस्टर्न वर्ल्ड है इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। मैंने उससे चंद दिन पहले एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स दिया था, दो या तीन लेक्चर्स थे मेरे ख़्याल में, जिसमें इस्लाम और वेस्टर्न वर्ल्ड की कल्चर्स को मैंने कंपेयर किया था। तो अब मैं अपनी यहाँ पे कमी भी अर्ज़ कर रहा हूँ इस वाक़े के अंदर आती है। तो मेरे जो लेक्चर्स का टाइटल था वो इस्लामिक कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर, इस टाइप का था। तो वो जो साहिबा थीं उन्होंने, उनके घर में मैं रुक भी चुका था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने मुझे कल्चर के हिसाब से कितने परसेंट इस्लामिक देखा है। बहुत अजीब सवाल है ये भाई, मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि ये आदमी 90% इस्लाम है या 80% इस्लाम है या 60% इस्लाम है। लेकिन वो खातून बहुत मेरे ख़्याल में बहुत दीनदार थी मेरे ख़्याल है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने शायद उनसे ये कहा कि मैं इस बात को नहीं जज कर सकता, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे नज़दीक जो कुछ मैंने अब तक देखा उसमें मोर देन 80% यू आर ऑन इस्लामिक कल्चर। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अजीब बात कही, कहने लगे कि मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे 80% से ज़्यादा मार्क्स दिए इस्लामिक कल्चर में। बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कुछ मैं क्रिश्चियन थी उसमें हार्डली 20% चेंज हुआ है मुसलमान होने के बाद भी। पहले वो हॉलैंड में रह रही थी, उनका मैं हॉलैंड में रह रही थी, मैं क्रिश्चियन थी और उसमें और अब मुसलमान होने के बाद हार्डली 20% चेंज हुआ है और यू ग्रेडेड मी विद मोर देन 80%। इसका मतलब है कि मैं जब क्रिश्चियन थी तब भी मेरे अंदर 60% वो था जिसको आप इस्लाम कह रहे हैं। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यस दिस इज़ पॉसिबल कि आप जब क्रिश्चियन थी तो आपकी थॉट्स के अंदर वही रियलिटी थी जो इस्लाम के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं उस वक्त वेस्ट में नहीं रह रही थी? मैंने कहा हाँ। तो कहने की कि फिर आप क्यों कहते हैं इस्लामिक कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर? और ये सही पॉइंट था, ये जो मैंने मुकाबला किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आप वेस्टर्न कल्चर मत कहिए, आप कहिए मटीरियलिज्म, इसकी ज़्यादा सेंस बनती है। तो मैंने उनसे कहा कि असल में जो करंट जो दुनिया है, जो जो इस कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स है, इसके अंदर ये जो मटीरियल कल्चर है ये ओरिजिनेट हो रही थी वेस्ट से, दैट्स वाई हम उसको कहने लगते हैं वेस्टर्न कल्चर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ये बात सही नहीं है, ये दुनिया में हर जगह होती है, आपके मुसलमानों के अंदर भी होगी, पाकिस्तान के अंदर भी होगी, चाइना के अंदर भी होगी, आप उसको इस तरह से टाइटल मत दें, ज़्यादा अच्छा टाइटल ये है कि आप उसको मटीरियलिज्म कहें। ये बात मैंने कबूल की और अभी भी कहूँगा कि जो कंपैरिजन होना चाहिए वो इस्लाम और वेस्ट के अंदर नहीं है, इस्लाम और मटीरियलिज्म के अंदर है। और इससे भी बढ़कर एक और चीज़ में जो मैं अभी अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, अच्छा अब वो लाइन है कहाँ पर? इस्लाम वर्सेस मटीरियलिज्म लाइन कहाँ पर है? लैंग्वेज है, लिबास है, अपीयरेंस है, क्या चीज़ है वो? तो मैं कहूँगा इसके अंदर, हाँ इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है मेंटेलिटी, परसेप्शन। ना लैंग्वेज है, ना लिबास है, आपका परसेप्शन ऑफ रियलिटी। कौन सी रियलिटी? सिर्फ ये दुनिया है या इसके बाद कुछ और भी है? दैट इज़ द पॉइंट। और जो इस वक्त ख़तरा मेरे सामने है वो ये कि बहुत सारे मुसलमान 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बातों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन अहले दुनिया हैं, अहले

समझती है और बाकी सबको कुछ भी नहीं। इन्नल इंसान अल यद का अर्रस्तकना, इंसान बगावत करता है जब वो अपने आप को बेनियाज देखता है। जब वो देखता है मैं सब कुछ हूं तो बस फिर मामला खराब हो जाता है। तो मसलन एक कैटेगरी हो गई कि जिसके पास सब कुछ है, दुनिया बहुत कुछ है, लेकिन खुदा नहीं है। वो कह रहा है कि ये सब मैंने किया है, और खुदा तआला फरमाता है तू है कौन, तेरे पास तो जिस्म भी तेरा नहीं है, रूह तेरी नहीं है, ताकत तेरी नहीं है, जहन तेरा नहीं है, सब मैंने दिया है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज, कल मैंने आपकी हजरत में अर्ज किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कुछ है और खुदा के साथ है, अल्लाह की बंदगी के साथ। हजरत सुलेमान हवाओं पर हुकूमत है, जिनों पर हुकूमत है, जमीन और आसमान के दरमियान ऐसे ऐसे लश्कर उनके पास हैं जो किसी के पास नहीं है, लेकिन अल्लाह की बंदगी के साथ है। और ये खुदा की बातें हैं। तो भाई दीन के अंदर असल क्या है? असल अल्लाह की बंदगी है। कभी दुनिया के साथ होती है, कभी दुनिया से हट के होती है। तो आपकी और मेरी जिंदगी में आसानी है असल है या आजमाइश असल है? क्या असल है? सख्ती असल है या आसानी असल है? तो मैं जवाब दिया बंदगी असल है। क्यों भाई? वो जो आसानी में होता है ना, वो भी इम्तिहान से गुजर रहा है, और वो जो सख्ती में है वो भी एक इम्तिहान से गुजर रहा है। दोनों को क्या करना है? दोनों को अल्लाह की बंदगी करनी है। ये की पॉइंट है। तो बस आसानी असल नहीं है, सख्ती असल नहीं है, अल्लाह की बंदगी असल है। और वो जो आसानी में है वो भी इम्तिहान में है, और वो जो सख्ती में है वो भी इम्तिहान में है। दोनों एक टेस्ट से गुजर रहे हैं। ये दुनिया टेस्ट के लिए बनी है। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक अंदाज़ में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और उसको कोशिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह कनेक्ट कर लूँ सबको, और आपकी सहमत आज के लिए तमाम करूँ। दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब भाई हमारे सामने एक क्वेश्चन है, खुदा ने सख्तियाँ डाली क्यों हैं? सबको आसान रख देता तो क्या हो जाता? तो ये जो हमने अभी कहा कि भाई खुदा आसानी देता है, उसके पीछे भी एक इम्तिहान है, सख्ती देता है, उसके पीछे भी एक इम्तिहान है। तो ये क्यों किया खुदा ने? 7 अरब इंसान रोए ज़मीन के ऊपर हैं, सब दावा कर रहे हैं हम मुत्तकी हैं, मसलन साबित कैसे होगा कौन सही है कौन गलत है? इम्तिहान डालो, आजमाइश डालो। खुदा कह रहा है भाई ये दुनिया मैंने टेम्परली बनाई है, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, ये दार करार नहीं है, दार करार कहीं और है, तो ये तो दार फना है। यही इम्तिहान हो गया। आपको यहाँ पे भेजा है, कुछ देर आप यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पर रहते हुए अपनी जॉब असाइनमेंट को आप अंजाम देंगे, उसके बाद कहीं और चले जाएंगे। अब जब आप यहाँ पर रह रहे होंगे, किसी भी हाल में रह रहे होंगे, खुदा इसी को देख रहा है आप कर क्या रहे हैं। अब चाहे आप आसानी में रह रहे हैं तब भी खुदा देख रहा है, सख्ती में रह रहे हैं तब भी खुदा देख रहा है। तो जो मोमिन होता है वो क्या करता है? वो बंदगी करता है, वो अल्लाह का बंदा बनता है। अब ये बंदगी कैसे होती है, इसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। बस अब तक मैंने क्या बनाया? एक फाउंडेशन क्रिएट की है, और वो फाउंडेशन क्या है? वो ये कि ना आसानी असल है ना सख्ती असल है। असल क्या है? असल ये है कि अल्लाह के बंदे बनो, आसानी में भी और सख्ती में भी। ये बंदगी कैसे होती है, इसको मुझे अब आपके सामने अर्ज करना है, और इसको ऐसे अर्ज करना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर फील कर सकें। देखिए अब मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुमकिन है कोई यहाँ पे बैठा हो जिसकी जिंदगी आज से मसलन 3-4 महीने पहले तक 100% सही चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई गम नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। अलबत्ता मुश्किल है कि ऐसा कोई हो, लेकिन हम मैं एज्यूम कर लेता हूँ शायद कोई हो,

लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर जिंदगी ऊपर से लेके नीचे तक सारी तब्दील हो गई। 3 महीने पहले से कोई गम नहीं था, अब सारी दुनिया के गम आ गए। 3 महीने पहले तक सब सही था, अब सब खराब हो गया। तो वो मुझसे आकर पूछे और कहे कि मौलाना, ये खुदा ने मेरे साथ ये क्या किया है? या मसलन वो आकर मुझसे पूछे कि मौलाना, जब मैं आसानी में था तो मैं खुदा से बहुत नज़दीक था, और अब जब मैं सख्ती में आ गया तो पता नहीं क्या मैं खुदा से दूर हो गया। तो भाई असल क्या है? तो फिर मैं अर्ज़ करूँगा, असल बंदगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हमेशा देखना चाहिए अल्लाह का बंदा क्या करता है, मुझे वो करना चाहिए, इसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर एक अल्लाह के बंदे को खुदा कुछ देता है तो वो क्या करता है? अगर अल्लाह के बंदे से खुदा कुछ लेता है तो वो क्या करता है? एक बड़ा खूबसूरत वाक्या, नफीस वाक्या मेरे जहन में आ रहा है, बहुत दफ़ा दोहरा चुका हूँ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो मेरे जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो शायद मुझसे नाराज़ भी होते होंगे कि भाई आप ये क्या करते हैं, एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि 2 वजहें, एक तो ये कि मेरा इल्म बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कुछ चीज़ें यकीनन दोहराऊँगा, दूसरी बात यह है कि भैया अहले बैत के वाक़यात में उनके अख़वाल के अंदर इतना अट्रैक्शन है, एक दफ़ा नहीं कोई मेरे सामने बाद औक़ात 15-15, 20-20 दफ़ा भी रिवायत पढ़ता है, मुझे उस रिवायत में मीनिंग नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब मुझे तालिबिन बने हुए 36 ईयर्स हो रहे हैं, 36 ईयर्स के अंदर बहुत सारी रिवायतें कई दफ़ा सुनता हूँ, हर दफ़ा सुनता हूँ देखता हूँ एक नई मफहूम है इसके अंदर, एक नई बात है इसके अंदर। तो शायद मेरे बयान में इतनी ताकत ना हो, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लगता है और उससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुलासे कलाम बिल्कुल अर्ज़ करूँगा और टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और वो ये कि एक आदमी आया इमाम के पास, उसने इमाम से पूछा, कुछ बातें की, इमाम ने उससे कहा कि इंसान के अंदर बुजुर्गवारी, बड़ाई, बरतरी किसे कहते हैं, अच्छी चीज़ इंसान के अंदर कमाल की बात हो। उसने एक जुमला कहा, उसने कहा कि मौला, पता नहीं मौला कहा या नहीं कहा, मेरे जहन में रिवायत नहीं आ रही अभी डिटेल्स के साथ। तो उसने जवाब में ये कहा कि अगर खुदा उसको दे तो शुक्र करे, और खुदा न दे तो सब्र करे, ये इंसान के अंदर कमाल है। आसानी में क्या करे? आसानी में शुक्र करे, ए खुदा तेरा शुक्र तूने मुझे दिया। सख्ती में हो तो क्या करे? सख्ती में सब्र करे, और खुदा से कहे खुदाया मैं सब्र करूँगा, मैं शिकवा नहीं करूँगा। उसने कहा कि इंसान को ये करना चाहिए। इमाम ने उससे कहा कि फ़लानी, उसका नाम था शकीक बलखी, कहा फ़लानी ये जो तुमने कहा कि इंसान के अंदर कमाल ये है, ये तो मदीने के कुत्ते भी ऐसे ही हैं, वो भी यही करते हैं। क्या मतलब? मसलन अगर कोई कुत्ते को कुछ देता है उसका मालिक, तो कुत्ता उसका शुक्रिया अदा करता है, उसके कदमों में लौटता है, उसके सामने धूप मिलाएगा और क्या करेगा। अच्छा मालिक अगर नहीं देता कुत्ते को तो कुत्ता क्या करता? कुछ भी नहीं, खामोश होकर बैठ जाता। क्या अपने मालिक को काटता है फिर? वो नहीं करता। तो क्या तुम कह रहे थे कि इंसान के अंदर कमाल ये है, आसानी का दौर हो तो शुक्र करे, मुश्किल का दौर हो तो सब्र करे, ये तो कुत्ते भी ऐसे ही करते हैं। तो इमाम फरमा रहे हैं कि ये तो जानवरों की जिबिल्लत के अंदर है, इसमें कौन सी कमाल की बात है। तो वो सटपटा गया, उसको पहले ही नहीं बोलना चाहिए था जब इमाम ने कहा था। तो मैं ऐसी अर्ज़ कर रहा हूँ, अदब ये है कि जैसे ही इमाम कभी ये कहें कि ये कैसे है, तो फौरन कहे कि अल्लाह और उसका रसूल और उसके वली जानते हैं कि कैसे है, हमें कहाँ पता। हाँ कभी वो इम्तिहान लें और कहें तुम बताओ, तो फिर तो मैं बताऊँगा ज़ाहिर है उनके हुक्म के ऊपर, वरना मुझे ज़बान नहीं खोलनी चाहिए उनके सामने, अदब होता है बाहर आलिक। तो उसने ज़बान खोल के सही नहीं किया, उसके अंदर एक अकड़ थी एक्चुअली, जो इमाम चाहते थे कि पॉइंट आउट हो जाए उसके लिए। तो फिर उसके बाद उसको एहसास हुआ मसला, उसने कहा कि आप फरमाएं। तो इमाम ने फरमाया कि हम अहले बैत जब खुदा हमें नहीं देता तो हम शुक्र बजा लाते, या अल्लाह, जब हम सख्ती में होते हैं तो हम

रुपए ज्यादा आते हैं। कहां से शुरू किया? नहीं किया कि मसलन हम फकत सब्र करते हैं, नहीं, हम सब्र करते हैं और उस सब्र के साथ शुक्र भी करते हैं। ये जो हमारे उर्दू में जुमले दोनों साथ इस्तेमाल होते हैं, सब्र और शुक्र। सब्र एक छोटा मरहला है सख्ती में, उससे बढ़कर क्या है? उससे बढ़कर शुक्र है, सब्र और शुक्र। तो कहा हम शुक्र करते हैं खुदा का, और उसके बाद अगर होता है तो क्या करते हैं? फरमाया अगर होता है तो हम बंदों में तकसीम कर देते हैं, लोगों को नवाज दे देते हैं, लोगों की जिंदगियों से मुश्किलात को हल कर देते हैं। या अल्लाह, देखिए ना आप स्टैंडर्ड कहाँ पहुँचा दिया। अगर नहीं होता तो शुक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर होता है तो बंदों की खिदमत करते हैं, बंदों की ज़िंदगी से मुश्किल को हल करते हैं। ये अहले बैत की अजमत है, इसको आपकी खिदमत में बाद में अर्ज़ करूँगा। यह अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का खासा है और काफ़ी गहराई है इसके अंदर इंशाअल्लाह। मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ कि इसको कैसे हमें डील करना चाहिए। और इसी के अंदर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि अगर बहुत सख्ती इंसान के ऊपर आ जाती है, किसी की मौत हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें, तो इंसान के लिए बिहेवियर क्या होना चाहिए, दुआओं का सहारा कैसे लेना चाहिए, सारी बातें इंशाअल्लाह अगले दिनों में अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार आलम लुत्फ़ फरमाएगा, और सब कुछ सीखना है अहले बैत अथार से है, क़ुरान करीम से है, उन्होंने सब कुछ सिखा दिया है, हकीकत ये है, सब कुछ बता दिया है। अब हमारी नसीब, हमारी किस्मत, हमारी मेहनत कि हम जाके सीखें कि उन्होंने हमें क्या सिखाया। उन्होंने तो सब कुछ सिखा दिया और इस सिखाने में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी नहीं, अपने जिगर गोशे कुर्बान कर दी, जाने कुर्बान करना। बहुत छोटा लफ्ज है अहले बैत की कुर्बानियों के सामने। अहले बैत ने जाने कुर्बान नहीं किए, अहले बैत ने जिगर के टुकड़े थे कुर्बान किए, सब कुछ दे दिया अल्लाह की रिजायत में, ऐसे बढ़े। हम बाज़ चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, हमारी हद है, हमारी लिमिट है, हम उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की बहुत सारी कुर्बानियों को नहीं समझ पाएंगे। आज की शब अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के इस सफ़र करबला में उस पहले हिस्से को बयान करते हैं, जब सैयद शुहदा ने मदीने से चलने का इरादा किया। जब मैं अपने बुजुर्गों से पूछता था, मिसाल के तौर पर कभी पूछता था पाकिस्तान बना था तो क्या हुआ था, अब मैं कैनेडा में, मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, शायद अजीब सी बात हो, तो उनमें से कुछ लोग मुझे एक जुमला सुनाते थे, मुझे जुमला समझ में नहीं आता था, अपनी मुश्किलात में से एक मुश्किल। वो जो पाकिस्तान आए थे उनमें से काफ़ी लोग इंडिया के हिस्से में रह रहे थे, जो बाद में इंडिया डिक्लेयर हुआ, तो वहाँ वो लोग अपने एंसेस्टर्स के ज़माने से रह रहे थे, फिर जब पाकिस्तान बना तो वहाँ से निकलकर वो इस पार्ट में आ गए जो पाकिस्तान कहलाता है। तो वो मुझसे एक जुमला कहते थे और मुझे समझ में नहीं आता था, वो कहते थे हम जब पाकिस्तान आए तो हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या कुर्बानियाँ दी हैं? पहली चीज़ जो मामूलन कहते थे, कहते थे हम लोग अपनी कब्रें छोड़कर आ गए। ये मुझे समझ में नहीं आता था कि इस जुमले का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि जब मैं इस वाक़े करबला को पढ़ता हूं और सैयदुश्शहदा अपने नाना के रोजे को अलविदा कर रहे होते हैं, जब मैं इस मंजर को देखता हूँ तो मुझे उनकी बात थोड़ी सी समझ में आती है कि वो क्या क्या रहे थे हमसे, और फिर ये समझ में आता है कि

जो इमाम हुसैन झेल रहे थे वो क्या था, नहीं समझ में आएगा। वैसे तो झलक समझ में आती है कि सैयदुश्शुहदा जब अपने नाना के रोजे पर अलविदा करने आए तो इसका मतलब क्या था। रावी कहते हैं कि जब सैयदुश्शुहदा नाना के रोजे पे अलविदा करने आए तो लोगों का जम्मे गफीर लग गया, और जब इमाम हुसैन अलविदा करके गए तो लोग रोने लगे। अजीजों, बड़ी रिवायात हैं इस मामले के ऊपर। मैं सिर्फ दो तीन रिवायात आपकी खिदमत में मुख्तसरन अर्ज करूंगा। सैयदुश्शुहदा नाना के रोजे पर आए और एक मौके के ऊपर कुछ देर के लिए वहीं एक मुकाशफे में जैसे गए, एक कनेक्शन डेवलप किया। हर वक्त कनेक्शन में होते हैं, लेकिन एक दफ़ा ख़ास हालत होती है, और उस ख़ास हालत के अंदर जैसे नबी के ऊपर वही उतरती थी, इस टाइप की कोई हालत होती है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के अंदर। अलबत्ता ज़ाहिर है कि वो वही नहीं होती, लेकिन एक स्पेशल कनेक्शन होता है। और अल्लाह के रसूल को देखा, सैयदुश्शुहदा ने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहा नाना क्या मैं आपके साथ कब्र में चला जाऊं। मैं जब ये जुमला पढ़ता हूं तो मुझे लगता है जैसे सैयदुश्शुहदा दोबारा अपने बचपन में आ गए हों, और गोया रसूल अल्लाह के सामने वही नवासा है। अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन से कहा कि इमाम हुसैन तुमने एक वादे को पूरा करना है। इमाम हुसैन तैयार हो गए। ये वादा बड़ा अजीब वादा था, और इसकी शहादत और गवाही हमें उस ज़ियारत में मिलती है जो इमाम हुसैन की विलादत के मौके के ऊपर रिवायत है, ज़ियारत है, जिसके अंदर लिखा है कि ये वो हैं जिसमें बच्चे के गिरिए से पहले दूसरों ने उसकी शहादत पे गिरिया कर लिया था। ये वादे इलाहिया था। और अजीज़ो, बस दो रिवायात, और एक वो रिवायत जब सैयदुश्शुहदा अपनी माँ के रोज़े पर आए अलविदा करने के लिए। कल मैंने आपकी खिदमत में इमाम का एक अलविदा बयान किया था, जब सैयदुश्शुहदा अपनी वालिदा के जनाजे पर आए थे अलविदा करने के लिए। अजीब मौका एक और आया, अब एक बार फिर इमाम हुसैन आए हैं अपनी माँ से अलविदा करने के लिए। और अजीज़ों, उसके बाद जो मंज़र था वो था कि जब काफ़िले इमाम हुसैन तैयारी कर रहा है, बनी हाशिम शुजाहत के लिए मशहूर थे, बनी हाशिम गैरत के लिए भी मशहूर थे, बनी हाशिम हया के लिए भी मशहूर थे, बनी हाशिम इफ़्फ़त के लिए भी मशहूर थे। सैयदुश्शुहदा की सवारियाँ जब चलने लगीं तो सैयदुश्शुहदा के साथ मुकद्दरात इस्मत तो तहारत थी, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी उम्मे कुलसूम, दूसरी अजवाज मुतहरात, वो सब साथ थीं, बच्चे भी साथ थे। जब ये काफ़िला चलने लगा तो इसने ऊँटों की अमारियों पे बैठना था, और उस मौके के ऊपर एक मौका आया जब लोगों के सामने ऐलान किया गया कि ऐ लोगों, नज़रों को झुकाओ। और गोया बनी हाशिम के जवान खड़े हो गए, और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई। अहिज़ो, आपने सुन लिया। अब बस उस दिन को याद करना जब 11 मुहर्रम का दिन था, और यही बीबी ज़ैनब इन्हीं जवानों के लाशों के सामने से गुजरती हुई अमारी पर सफर कर रही थी, और जब मक्तल के सामने पहुंची तो अपने आप को अमारी से गिराया और जमीन पर तशरीफ लाई, और इमाम हुसैन के लाशे अकदस की तरफ बढ़ी। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अला लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बियन क़लिबून। परवरदिगारा, तुझे वास्ता नबी औलाद नबी का इस कलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदावंदा, तुझे वास्ता नबी औलाद नबी का उनकी नूरानियत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, दुनिया और आखरत में तेरे मोहताज हैं खुदाया,

ये देख लेता हूं इसमें टाइम कितना लगता है, ताकि उसका मैं प्लान कर सकूं कि बाद में कभी शैतान मुझसे कहे कि भाई ये अमल नहीं करो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं शैतान को बताता हूं कि इतना टाइम से ज्यादा नहीं लगेगा। इस वक्त में, इस घंटे में बहुत अहम एक दुआ है, दुआए समात नाम करके, सीन मीम अलिफ थे, आयन नहीं है बीच में, समात नहीं है, समात सीन मीम अलिफ थे, मफाजुल जनान के अंदर मौजूद है, नेट के ऊपर सर्च करेंगे मौजूद है, duas.org के अंदर भी मौजूद है। इस घंटे की है दुआए समात, इस घंटे की है। उसमें अल्लाह के मौजूदों का तस्करा है, अल्लाह के अस्मा का तस्करा है, जिसके खुदा जिसके जरिए खुदा मुताल ने अंबिया की नुसरत फरमाई, नबी औलाद नबी की नुसरत फरमाई, और उसके बाद फिर कुछ दुआएं मांगी गई हैं। तो ये दुआए समात, इसका वक्त ये वक्त है, बहुत अच्छी दुआ जो जिंदगियों को तब्दील करने वालियों में से एक है। इसी तरीके से अगर किसी को अमल अंजाम देना है, मैं शायद इसकी तौफीक कम हासिल कर पाता हूं, लेकिन अगर किसी ने अमल अंजाम देना है, ये वक्त है, 100 मरतबा सूरह कद्र इस घंटे में कोई पढ़ ले, ये काम है, इससे मानवियत को बूस्टर लगेगा। अगर कोई शख्स 100 मरतबा सूरह कद्र शब जुमा पढ़ ले, 100 मरतबा सूरह कद्र मगरब जुमा से पहले वाले घंटे 2 घंटे के अंदर पढ़ ले, शायद कम कोई अमल होगा जो मानवियत को तरक्की देने में इतना मददगार साबित होगा, कुछ और ही होगा। फिर ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात है कि अगर कोई कहे कि मुझे मौला के हुजूर इस्तगासा करना है, ये वक्त है, ये वक्त है, उस इस्तगासे के लिए एक नमाज रिकमेंडेड है, इस वक्त के लिए वो नमाज बहुत अहम है, हर रोज इस वक्त में पढ़ने की है, लेकिन जुम्मे के दिन इस वक्त में पढ़ने की खास कर है। वो नमाज वही नमाज है कि जो आप मस्जिद जमकरान में जाकर पढ़ा करते हैं, 100 मरतबा इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, वो नमाज अगर किसी ने पढ़नी है, ये वक्त आइडियल टाइम है, ये वक्त है। वैसे तो हर रोज मगरिब से पहले पढ़ ले तो अच्छा है, 10-12 मिनट की नमाज होती है, लेकिन इससे बहुत मसाइल हल होते हैं, और जाहिर है कि सबसे बड़ी मुश्किल जो हल होती है वो इमाम की नजर लुत्फ नसीब होती है इस वक्त के अंदर, अपने इमाम के हुजूर अदा एहतराम के लिए, उनकी जद्द अमजद की शहादत की तसलियत पेश करने के लिए, उनके जहूर की ताजील के लिए दुरूद भेजें, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद व अजल फरजहु, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। मेरी हमेशा कोशिश होती है जहाँ पहली दफ़ा पहुँचता हूँ 2-3 नुकात जल्दी जल्दी कहूँगा, कोई खमसा हो या अशरा हो तो चलो एक दिन इसी में गुजार देता है आदमी, लेकिन ये चंद मिनट्स हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल में अब 25-30 मिनट 40 मिनट कितना बाकी होगा अल्लाह जानता है, और उसमें मैंने आराइज पेश करनी है। तो 2-3 नुकात इस सिलसिले में मैं दुरूद बहुत पढ़वाता हूँ, खासकर जुम्मे का दिन है, तो मेरा तो दिल चाहता है आप दुरूद ही पढ़ते ना, एक बार फिर दुरूद भेजें, मोहम्मद व आले मोहम्मद शायद अब इस बुढ़ापे में जाकर इन नुकात को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आदत बनी हुई है लिहाजा मैं सोचता हूँ कर लूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हमें कभी नहीं सुना होगा, ये भी अल्लाह की दीवी शायद कोई तौफीक होगी कि नहीं सुना हो, अगर जिन्होंने सुना है तो उन्होंने पहले से सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है उनकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। उनमें से बाज़ दोस्त अहबाब ये समझते हैं मौलाना मजलिस अभी थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, अभी ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं मजलिस बाद में शुरू करेंगे, तो मैं पहले तो उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं शुरू से आखिर तक यही मजलिस होगी। अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कोई खिताबत दिखाऊंगा, तो मैं आपकी खिदमत में पहले से ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, ना मुझे खिताबत आती है, ना मैं खिताबत का कोई जौहर दिखाऊंगा, मैं यही करूंगा। क्यों करूंगा ये एक अलहदा मामला है, क्यों इसको मैं अब तफसील से अर्ज करूंगा, टाइम आपका लग जाएगा, लेकिन फकत इस बात खातिर अर्ज कर रहा हूं कि मैंने ये एहसास किया कि हमारी कौम में बहुत सारी चीजें कुर्बान करके हमने खिताबत ली है। मैं उन चीजों को कुर्बान नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने अंदर यह तय किया कि अगर खिताबत लेने के लिए वो सब कुर्बान करना है, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने उनको नहीं कुर्बान उनको कुर्बान नहीं करना है, और मुझे खिताबत नहीं करनी।

तो किसी ने मुझसे कहा, ये अमलन हुआ है, किसी ने मुझसे आकर कहा कि अगर आप ये करेंगे तो आप बड़े खतीब कभी नहीं बनेंगे। तो मैंने उनको कहलवाया, मैंने कहा उनसे कह दीजिए मुतमईन रहिए मेरा बड़ा खतीब बनने का कोई इरादा नहीं है, मुझे खतीब बनना ही नहीं है। अच्छा, अगर आपने खिताबत नहीं करनी और खतीब नहीं बनना है तो फिर करना क्या है? यहां तो लोग जाहिर खिताबत के लिए आते हैं, जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, अपने ही बात कर रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे खतीब नहीं बनना है, मुझे खिताबत नहीं करनी, मैं 1984 में तालिबे इल्म बना था, मेरा काम यह है कि अहले बैत के उलूम में से चंद पॉइंट्स को इंतखाब करूंगा, सादा सलीस जबान में जो मुझे आती है वो लोगों के सामने पेश कर दूंगा। हदफ क्या है? हदफ यह है कि चंद कदम मुझे अहले बैत से नजदीक होना है, चंद कदम सुनने वालों ने अहले बैत से नजदीक होना है। ये लोग हुब्बे अहले बैत में यहां तक आते हैं, ये मेरी तेरी मोहब्बत में नहीं आते। हम लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हम इनको अपनी अपने आप को इनकी मंजिल ना बनाए, हमें चाहिए हम पुल बने, लोगों को भेजें अहले बैत की समत, हमें यह करना चाहिए। तो अपने जौहर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हो तो दिखा दे कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इसरार की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को मुत्तसिल करना चाहिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से, यह असली काम है। उलूम को लोगों तक पहुंचाना यह असली काम है, बाकी जो होता है हो जाए। तो हमने तय किया कि हम जिंदगी में यही करेंगे, ये एक पॉइंट हो गया। दो पॉइंट और अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। अब जाहिर है कोई तकल्लुफन भी उठ के नहीं जाता है, लेकिन मैं हमेशा कह देता हूं कि अगर कोई खिताबत के इंतजार में आया था तो वो जा सकता है, कोई मसला नहीं है, चूंकि यहां नहीं होने वाला वो। दूसरी बात यह थी कि मैंने हिसाब लगाया, कुछ दिन पहले भी एक जगह मजलिस में इसको दोबारा दोहराया, तो मैं अंदाजा लगाया कि जैसे कराची जैसे शहर में हर साल जो मजलिसें होती हैं वो अंदाजन 8 से 10 लाख मजलिसें होती हैं, अंदाजन 8 से 10 लाख। तो मैंने अंदाजा लगाया कि भाई यही तकरीबन हर शहर के अंदर हो रहा है कि गुज़िश्ता 30-40 साल 50 साल में मुझे आज तक कोई शहर ऐसा नहीं मिला जो ये कहें यहां मजलिसें कम हुई हैं। तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, बगैर यहां रुके, कभी यहां शायद रुकाऊंगा एक आध दिन, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि यकीनन मैनचेस्टर सिटी में भी, इस शहर में भी मजालिस बढ़ रही होंगी, कम नहीं हो रही होंगी। अच्छा, सेंटर्स बढ़ाने का तो हमारा एक जिसे कहते हैं फितरी रुझान है, आपको पता ही है, वो हम बढ़ाते रहेंगे, और क्यों बढ़ाते हैं उसका भी खैर बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारी तौफीकात हैं, वो हमें नसीब होती रहती हैं, तो हम बढ़ाते रहेंगे। वो तो सेंटर बढ़ते रहते हैं, मजलिसें बढ़ती रहती हैं, सब कुछ बढ़ता रहता है हर शहर में। एक बात पूछता हूं, सच्चाई बढ़ रही है? मोहब्बतें बढ़ रही हैं दिल की? अब मुझे समझ में यह नहीं आता कि जिन जगहों पे दीन बढ़ रहा है वहां सुकून क्यों नहीं बढ़ रहा है। अला बे जिक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान फरमा रहा है, लो अनफक्त मा फिल अर्ज जमीअन मा अल्लफ्ता बैना कुलूबहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफा बैना कुलूब। खुदा ने मुताल फरमाते हैं हम तालीफ कुलूब करते हैं, दीन बढ़े जा रहा है, मोहब्बतें नहीं बढ़ रही। अब सवाल यह है, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो यह गड़बड़ क्यों हो रही है? तो मुझे एक बात समझ में आई, बहुत सारी बातों में से एक बात जो आपके सामने कह दूं तो मसला ज्यादा नहीं होगा। कुछ बातें तो ऐसी समझ में आती हैं जो इंसान ना कहे बेहतर है, जरा सा अपना भी ख्याल कर ले, जिंदा रहना है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं नहीं कह दे बेहतर है, तो उनमें से एक बात यह है कि भाई हमारे साथ हुआ यह है कि हमने कुछ ऐसे इल्म पर इसरार किया हुआ है या कुछ ऐसे उलूम पर इसरार किया हुआ है जो इल्म होने के नाते तो कुछ दे देते हैं, अमल में कुछ नहीं दे पा रहे। कुछ ऐसा काम हो गया हमारे साथ। तो मसलन मैंने शायद अपनी जिंदगी में 25-30 हजार मजालिस सुनी हो, और मुमकिन है कि मैं एक जगह पे बैठूं, 2 घंटे मजलिस होती रहे, मजलिस होने के बाद मैं बाहर निकलूं और कोई मुझसे कहे मौलाना जो कुछ आपने सुना मजलिस में उसमें 2 सफे लिख के मुझे दे दें, तो मेरा बच्चा ना लिख सके। कुछ ऐसा हो गया है। तो मिसाल के तौर पर कोई आता है 40-40 साल मजलिस सुनता है, उससे मैं पूछता हूं तुम

ने 240 मौला के खुतबे नहजो बलागा में आज तक कितने पढ़े? सिफर। कुछ हो रहा है यहां पे। तो मुझे समझ में आया कि भाई हो ये रहा है कि हम उलूम के दरिया बहा रहे हैं, अमल के अंदर बहुत पीछे रह गए। तो मैंने अपनी जिंदगी में तय किया कि सिर्फ इल्म की बात नहीं करूंगा, हर इल्म के पीछे अमल की बात करूंगा, ताकि जो यहां पे आए उसको उलूम अहले बैत अतहार में से वो हिस्सा जरूर पता चले जिस पर अमल होना है। इसीलिए दो तीन पॉइंट तो मैंने शुरू में ही आपको कह दिए कि भाई अगर आप कोई बाद में जाके कहे कि मौलाना ने कहा था कि अमल की बात करेंगे, बात तो कोई नहीं की, तो मैंने शुरू में ही दो तीन पॉइंट अमल के कह दिए कि हाँ भाई अमल के लिए ये होगा, बाद में जो कहूंगा वो तो कहूंगा। ये दो बातें हो गई। एक और बात आपसे कहनी है, फिर मौजू पर आता हूं, वक्त भी बहुत कम है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, बहुत सारे बोलने वाले खुतबा उलमा जाकिरीन हर एक का अपना एक अंदाज होता है जो सही होता है, गलत नहीं होता किसी का भी, मसलन सही होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे बोलने वाले, उनको ज्यादातर वक्त गुजारना होता है ऐसी कौम को कुछ सुनाने में, और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं होती, दुआएं नहीं होती, सुनाने में जो यहां बैठी ही नहीं है और उसने कभी पलटकर हमसे सुनना भी नहीं है। तो हम जैसे बोलने वाले बहुत सारा वक्त लगा देते हैं ऐसी कौमों को सुनाने में जो ना यहां आते हैं ना वो हमारी सुनते हैं, हत्ता लाउड स्पीकर पे भी सुनाई दे तो कानों में उंगलियां ठूंस के बैठ जाते हैं, वो उसको सुनाते रहते हैं। और जो यहां बैठे होते हैं उनकी जिंदगी को तब्दील करने वाली बात नहीं करते। तो मैंने देखा इसमें तो डबल लॉस हो गया, ना जिनको वो सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, और जो यहां सुनने के लिए बैठे हैं उनके सुन के अमल करने की बात कम कर रहे हैं, तो डबल लॉस हो गया। तो मैंने अपनी जिंदगी में तय किया कि जो यहां नहीं बैठा है मैं उसको सुनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं जितनी बातें करूंगा वो उनसे करूंगा जो यहां तशरीफ फरमा है, बाकी जो नहीं है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, फिलहाल कोई सरोकार नहीं है। बाकी दोस्तों को सरोकार है, वो उनको निपटा भी रहे, बिल्कुल अच्छे तरीके से निपटाते रहे, मैंने इस वादी में नहीं घुसना है। मेरी वादी ये है जो यहां बैठे हैं इनके लिए मैंने क्या करना है, वो मेरा टॉपिक बनता है। तो ये तीन नुकात मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, अब चंद आराइज पेश करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, हम जो जिंदा हैं, जैसे मैंने आपसे जुमला कहा हम जो जिंदा हैं, एक माना में ये जुमला बहुत तारीफी जुमला है, एक माना में ये जुमला बहुत तारीफी जुमला है। क्यों? अब आपकी खिदमत में शायद हो याद होगा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें नजर आती हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हकीकत होती हैं, मुसल्लम हकीकत लेकिन नजर नहीं आते। अब हमारे पास आयत करीमा में एक आय करीमा है, वो ये कि ऐ लोगो जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें पुकारें, इस्तजीबू लिल्लाह वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और उसके नबी जब तुम्हें पुकारें तुम उनकी दावत पर लब्बैक कहो ताकि वो तुम्हें जिंदा कर दें। अब मैं आपसे पूछूंगा ये आयत क्या कब्रिस्तान के लिए नाजिल हुई है? ये तो नहीं हो सकता, आयत तो कब्रिस्तान के लिए नाजिल नहीं होती है। हां एक मुश्किल हम लोगों के साथ है, वो क्या है, हमने दीन की बहुत सारी चीजों को मुर्दों के लिए करार दे दिया है। दीन मुर्दों के लिए नहीं आता, दीन आता है जिंदों के लिए। हमारे यहां ज्यादातर कुरान करीम उस वक्त खुलता है जब कोई मरता है, जिंदों के लिए नहीं खोलते हम, ये हमारी मुश्किल है। खुदावंद ने दीन जिंदों के लिए भेजा है, मुर्दों को सवाब पहुंचाया जा सकता है, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सकती है आमाल खैर के जरिए से। दीन नाजिल होता है जिंदों के लिए। जब खुदावंद ने आय करीमा में फरमाया जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें पुकारें तो तुम उनकी बात पर लब्बैक कहो, जवाब दो ताकि वो तुम्हें जिंदा करें, यह आयत कब्रिस्तान के लिए है या शहरों के लिए? शहरों के लिए, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, जिंदों के लिए। तो ये क्यों कहा कि ताकि वो तुम्हें जिंदा करें?

अब इसका मतलब यह है कि अल्लाह हर सांस लेने वाले इंसान को जिंदा नहीं मानता। बस खुदा ने मताल के नजदीक ये जो सांस लेने वाले इंसान हैं ये दो कैटेगरी में आते हैं। ये सांस लेने वाले, सांस लेने वाले का मतलब अभी ये कब्रिस्तान में नहीं पहुंचा है, ये सांस ले रहा है। ये जो सांस लेने वाले इंसान हैं इनमें दो कैटेगरीज हैं, एक वो हैं जो जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, और एक वो हैं जो मुर्दा हैं वो भी सांस ले रहे हैं। खुदा ने मुताल फरमाता है कि जब अल्लाह और उसके नबी तुम्हें पुकारें तो तुम जवाब दो ताकि वो तुम्हें जिंदा करें, वरना तुम सिर्फ सांस लेते लेते दुनिया से चले जाओगे, जिंदगी नसीब नहीं होगी। और यही कुरान करीम कुछ लोगों को जो हत्ता सांस नहीं ले रहे उनको कहता है वो कतअन जिंदा हैं। सोचना भी नहीं कि जो अल्लाह की राह में मारे गए ये मर गए, ये जिंदा हैं। अच्छा, वो सांस ले रहे हैं क्या? नहीं। कुरान करीम फरमाता है वो जिंदा हैं। अब मेरा एक सवाल अपने आप से है, मुझे कैसे पता चले मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं? या तो कोई मुझसे कह दे नाऊज़ बिल्लाह ताला, कुरान करीम में नाऊज़ बिल्लाह ताला शायरी हुई भी है, ये शायरी नहीं है, ये किताब किताब हक है, ये किताब हक है, ये हक के सिवा कुछ नहीं कहती है। इस किताब ने कुछ सांस लेने वालों को मुर्दा कहा है और कुछ सांस न लेने वालों को जिंदा कहा है। क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मैं जिंदा हूं या नहीं हूं? अब खुदा ने बताया ने जिंदा की निशानी क्या दी है जिससे मैं ये समझ पाऊं कि मैं जिंदा हूं या जिंदा नहीं हूं? दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद ने फरमाया वला तहसबन्ना लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवातन बला हयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। एहिया की निशानी यह है, जिंदा होने की निशानी यह है कि वह अपने रब के नजदीक रिस्क पा रहे हैं। दो बातें हो गई, एक तो यह कि अपने रब से दूर नहीं है, अगर जिंदा है अपने रब के नजदीक है। दूसरी बात यह कि यह जो जिंदा है रब के नजदीक है, यह लकड़ी पत्थर की तरह नहीं बैठा हुआ, ये नजदीक होने की वजह से मुसलसल रिज्क पा रहा है। हां, सीगा भी जो इस्तेमाल हुआ ना वो मुसलसल का इस्तेमाल हुआ है, मुसलसल रिज्क पाता है। बस एहिया और जिंदा होने की दो निशानियां हो गई, एक निशानी ये हो गई कि ये इंदा रब्बिहिम, ये अपने रब के नजदीक होता है, और दूसरी निशानी ये हो गई कि इसको मुसलसल रिज्क मिलता रहता है। सही। अब यहां से एक और कहानी शुरू हो गई, रिस्क में और दौलत में क्या फर्क होता है? रिस्क में और खाने में क्या फर्क होता है? क्योंकि जिनको खुदा कह रहा है वो जिंदा हैं और रिस्क पा रहे हैं, क्या वो खाना खा रहे हैं क्या? नहीं, उनकी बॉडीज खत्म हुई भी हैं, वो तो खाना नहीं खा रहे लेकिन रिस्क पा रहे हैं। अब मेरे सामने एक मुश्किल आ रही है, ऐन मुमकिन है कि मैं जिंदा हूं, सांस लूं और मरा हुआ हूं और मुसलसल खाना खाता रहूं और मुझे रिस्क नसीब ना हो रहा हो। अब मुझे अपने आप से एक सवाल करना है, वो खुशकिस्मत कौन से होते हैं जो जिंदा होते हैं, अपने रब के नजदीक होते हैं और मुसलसल रिस्क पाते हैं, इसकी निशानी क्या होती है और ये काम वो कैसे कर लेते हैं, वो ये काम कैसे कर देते हैं? मैंने बहुत इसको पेचीदगी से निकाल कर इधर लाने की कोशिश की है और मैं चंद मिनट में आपकी खिदमत में सिलसिले में कुछ अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अरबी में एक मुहावरा कहते हैं मन जद्दा वजद, जो ढूंढेगा वो पालेगा। और अब हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, दोनों हाथ जोड़ू ना जोड़ू, जोड़ लेता हूं, कोई मसला नहीं है, हम लोग खाने के पीछे हैं या रिस्क के पीछे हैं? हम लोग दौलत के पीछे हैं या रिस्क के पीछे हैं? फिर जिंदा

अब कोई आदमी कहे कि मैं झूठ बोलकर भी तरक्की कर लूंगा, ये झूठा है, ये झूठा है, चाहे इसको पता हो चाहे इसको ना पता हो। कोई कहे मैं झूठ बोल के भी काम चला लूंगा, इसको या तो पता नहीं है या ये झूठ बोल रहा है, इसको नहीं पता। इस तरह नहीं हो सकता सच बोलना। अब सच्चाई के अंदर भी बहुत मसाइल हैं, वो क्या है, कम से कम झूठ जो हमारी सोसाइटीज में राइज है वो ये है कि चेहरे पे कुछ दिखाते हैं अंदर कुछ और होता है, ये कम से कम झूठ है जो राइज है। जबान का झूठ भी बहुत राइज है, ठीक ठाक राइज है, लेकिन कम से कम झूठ जो राइज है, चेहरे पे कुछ दिखाते हैं पीछे से कुछ और होता है। वो कहते हैं अगर आप किसी महफिल में गए और कोई एक आदमी उठकर सबसे ज्यादा आपकी तारीफें कर रहा है तो जरा खतरे की अलामत है, इतना मामला खराब हो गया। अब कुछ समझ में नहीं आता किस पे एतमाद करना है किस पे नहीं करना है। अगर सोसाइटी ऐसी हो और वो कहे कि हम इंदा रब्बेहिम हैं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर किसी को अल्लाह के नजदीक जाना है, पहली सिफत रहमदिली, दूसरी सिफत सदाकत, तीसरी सिफत आप खुद ब खुद समझ गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई पहली हो गई रहमतुन लिल आलमीन और अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत से पहले क्या थे, सादिक थे, और तीसरी सिफत पता चल गई, अमानतदारी। दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद पर, मोहम्मद आल मोहम्मद। आप इन तीन सिफतों पे काम कर लें, मैं इन तीन सिफतों पे काम कर लूं, खुदा बाकी नसीब कर देगा। आप कहेंगे मौलाना इल्म भी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। कुरान करीम ने फरमाया इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, खुदा तुम्हें सिखा देगा। हाँ रिवायत फरमाती है तुम अपने इल्म पर अमल करो, जो तुम नहीं जानते वो खुदा सिखा देगा, इल्म पर अमल करो। तो ये सबसे छोटा रास्ता हो सकता था जो अल्लाह के नजदीक जाने का, मैंने आपकी खिदमत में आज कर दिया। तौफीक इलाहिया, तवस्सुल अहले बैत, इसके जरिए इन तीन सिफतों पे काम कर दें, रहमत सदाकत अमानत। रहमत और सदाकत के बारे में चंद जुमले अर्ज किए, अमानत के बारे में एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मैं मिसाल बहुत देता हूं अपने लिए भी, अगर कोई मुझे पांच सेब दे और कहे मौलाना ये पांच सेब आप अपने हाथ में रख लें, इसको लोगों में तकसीम कर दें, एक आप भी रख लें, मैं कौन सा रखूंगा? आपने बिल्कुल माशरे के हिसाब से जवाब दिया है, माशरा यही करेगा, बल्कि ज्यादातर तो पांचों रख लेंगे, ज्यादातर वो अपने आप को ही इंसानियत का पैकर समझेंगे और कहेंगे हम ही इंसानियत हैं, बाकी तो पता नहीं है या नहीं है, तो ये पांच का हक मेरा ही है, वो रख लेंगे। अच्छा इसने कहा था मौलाना एक आप रख लीजिएगा, इसने कहा था कि सबसे अच्छा आप रख लीजिएगा, नहीं तो अगर मैंने सबसे अच्छा उठा दिया तो मैं अमानतदार हुआ या नहीं हुआ? डाउटफुल है, अच्छी अमानतदारी नहीं है। अगर मैंने पांच में से एक से ज्यादा उठाया फिर तो पक्का बेईमान हूं, पक्का बेईमान, क्योंकि उसने एक कहा था। अगर मैंने एक में सबसे अच्छा उठाया मेरी अमानतदारी मशकूक है, क्योंकि उसने कहा था एक आप रख लीजिएगा, यह नहीं कहा था सबसे अच्छा आप रख लीजिएगा। आप कहेंगे नहीं चांस तो था, उसके दिल से पूछो, उसने वो एक भी रिश्वत में दिया था कि मैं पांच ना खा जाऊं, एक भी उसने मुझे इसलिए पकड़ाया था कि मैं पांच ना खा जाऊं, इसलिए उसने कहा था एक तो आप रख लीजिएगा। तो मैंने कहा सबसे अच्छा रख लूं, नहीं ये ना इंसाफी है, मुझे सबसे अच्छा नहीं रखना चाहिए था, कौन सा रखना चाहिए था? एवरेज, मुझे चाहिए था पांच में से देखता कि एवरेज कौन सा है, वो मैं उठा सकता था। बहुत अच्छा होता मैं इंसान, बहुत अच्छा इंसान होता तो क्या करता? मैं कहता यार इस बंदे की नीयत मुझे देने की नहीं है, इस बंदे की नीयत लोगों को देने की है, बिलावजह मैं एक भी मत खाओ खुदा।

नहीं देगा, इसको दे दो, जान छुड़ाओ अपनी, ये अमानतदारी है। किसके पास है, कहां है वो? मैं एक दफा पेशावर एयरपोर्ट पे था, किसी ने कहा पीछे से, कोई एयरपोर्ट का क्रू था, उसने कहा कि अमानत अमानत कहां है, मैंने कहा यहां खत्म हो गई है यहां खत्म हो गई है, कहीं और ढूंढो, यहां नहीं है, अब मुश्किल है। जब हम ऐसे हैं, अब हम कहते हैं कि हमारी नुसरत के लिए फरिश्ते क्यों ना उतरे, क्यों उतरे, क्यों उतरे भाई, कुछ करो तो उतरे, जमीन पे खुदा के नुमाइंदे बनो, सादिक बनो, अमीन बनो, रहमदिल बनो, तो फरिश्ते उतरेंगे। नहीं करो फिर भी उतरे, क्यों उतरे भाई, ये मुश्किल है हमारी। अब मैंने आपको जितना खुलासा तरीन कर सकता था ना अपनी दानिश में, वो मैंने आपकी खिदमत में करके अर्ज कर दिया, और ये समझ लीजिए मैंने बहुत सारी चीजों को निचोड़ा निचोड़ा के कम करूं करते करते यहां तक ले आया, ताकि इसको कह के आपके यहां आने को और फायदेमंद बना दूं। भाई ऐसा ना हो कि आप कहें कि मौलाना हमने तो आपके लिए 2-3 घंटे वहां पे वक्त लगाया और आपने हमें कोई काम की बात ही नहीं बताई। तो शुरू में भी थोड़ी सी काम की बात बता दी थी, बीच में भी ये औसाफ के ऊपर बता दिया है, और तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। आखिरी बात, हर कुछ अरसे के बाद अपना हिसाब लेते रहना, मेरी रहमदिली बढ़ रही है या घट रही है, मेरी सदाकत बढ़ रही है या घट रही है, मेरी अमानतदारी बढ़ रही है या घट रही है, हिसाब लेते रहो। क्यों? शैतान के धोखों में से एक धोखा है कि वो गाफिल कर देता है, गाफिल कर देता है। वो फारसी में एक था, कहते थे मंसूरा हाजी बुगोजम थू मरा हाजी बेगू, तुम मुझे हाजी बोलते रहो, मैं तुमको हाजी बोलता रहूं, मैं तुमको जन्नती बोलूं तुम मुझे जन्नती बोलो, मैं तुम्हें ये बोलूं तुम मुझे वो बोलो, फिर पता नहीं कौन क्या होता है। आखिरी बात एक अर्ज करूंगा, ये अल्लाह ने तौफीक नसीब कर दी है, अल्लाह ने तौफीक नसीब कर दी, हमें हुब्बे अहले बैत दिया, उनकी मोहब्बत दे दी, हमारे दिलों में उनका एहतराम डाला है, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानियां दी। वक्त नहीं है अभी, किस तरह मौला सातवें इमाम की 26 या 27 औलादें, अल्लाह अपने भाई की नुसरत के लिए बढ़ती थीं और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में शहीद हो होकर दफन होते थे। मौला सातवें इमाम की औलाद है, हर शहर में आप देखोगे, बड़े शहर में मौला सातवें इमाम का कोई फर्जंद तशरीफ फरमा है, बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी कुर्बानियां दी। और मौला आठवें इमाम, ओ इमाम रऊफ पे हमारा सलाम, गरीबुल गुराबा पे हमारा सलाम, आखिर वक्त तक अपने बेटे को याद करते रहते थे। और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मुसलसल अपने वालिद की याद में रहते थे। इन इमाम मजलूम को उस खलीफे वक्त मलऊन ने एक इलाके में रखा हुआ था, मानने वालों से दूर, अपनी नजरों के अंदर और घर के अंदर से साजिशें करवाता रहता था। अगर शबाहत अर्ज करूं ना, तो इमाम जवाद को शबाहत हासिल है मौला हसन मुजतबा से, अल्लाह, जिस तरह इमाम हसन मुजतबा के घर के अंदर से साजिशें हो रही थीं, इमाम जवाद भी उसी मजलूमियत से गुजर रहे थे जिस तरह इमाम हसन मुजतबा को जहर दिया गया। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी जहर का निशाना बने। मैं किसको ताजियत पेश करूं, यकीन मानो चूंकि मैंने शायद सबसे ज्यादा ज्यारत किसी इमाम की हो तो मौला आठवें इमाम की है, तो मैं आज के दिन ताजियत पेश करूंगा मौला आठवें इमाम को उनके फर्जंद के लिए। मौला आपको हमारा सलाम, आपके फर्जंद की तसलियत, और फिर तसलियत पेश करूंगा वक्त के इमाम को। और आखिरी तसलियत का जुमला अर्ज करूंगा, बिन्त रसूल अल्लाह बीबी उम्मुल आइमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा,